0: बुद्धिस्ट डाक्टर सुरेन्द्र आचार्य द्वारा दैनिक भिडियो एक्सरे तथा एनोमाली स्क्यान सेवा र दैनिक इसीजी गुणस्तरीय ल्याब र फार्मेसी सेवा लिन सक्नुहुनेछ।
1: विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क 0564142333 र 98678187।
0: वीरेन्द्र स्वास्थ्य क्लिनिक शुक्लागण्डकी चार दुलेगौड़ा।